0: Richie, would you do me a favor and eat my pussy for me, please?
1: Sure.
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए आहा अरे